जी ने मनुख नू समय दी कदर करन वास्ते प्रेरणा कीती। सतगुरु कहंदे ने सारियां जूना दा सरताज बना के मैं तैनू संसार विच भेजिया। आम बात है कि जेड़ा वड्डा होवे ओदी जिम्मेवारी भी वड्डी हुंदी, वड्डे दी जिम्मेवारी भी वड्डी। साहब कहंदे ने इस धरती में तेरी सिकदारी, वड्डे वड्डे शींब गेले नथां पाई फिरदा इंसान, बड़े बड़े जरीले नाग पटारियां विच बंद करी फिरदा। सतगुरु कहंदे ने पर तेरा कोई फर्ज भी है, तैनू नाम जपण वास्ते भेजिया संसार विच। गोबिंद मिलन किए तेरी बरिया, ए समा है तेरे नाम जपण दा। तां बाबा फरीद ने चेतावनी दित्ती, हे भाई जदों दरिया विच थोड़ा थोड़ा पानी होवे ओदू तां बेड़ा तैयार कर लै ताकि समय नाल तू पार लंघ सके, ते जदों दरिया विच तुगयानी आ गई, तूफान आ गया, दरिया ठाठा मारदा होवेगा, उस वेले मित्रा पार नहीं लग्या जाना, फिर तां डुम्मण दी गल ही है। इस करके कृपा कर, नाम जप, नाम दा बेड़ा तैयार कर ताकि समय नाल तू पाव सागर तर सके। गुरु महाराज सच्चे पातशाह दी पवित्र बाणी विच बाबा फरीद जी प्रेरणा दे रहे ने, ते सानू चेतावनी कर रहे ने, भाई समय दी कदर कर।

लगी और न यही महात्म्य अवतारी उजागिर यान कियो। तिनके दुख कोटिक दूर गए मथराज ने अमृत नाम पियो। एह मद ते मत चुके रे मन पेद बेद न जान दियो पर ताछिर।

ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो, जैसी आज्ञा कीनी ठाकुर तिसते मुख नहीं मोड़ियो। सहज आनंद रखियो गृह पीतर उठ।

के निर्जुन नरूप हो के निर्जुन पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर गर देश कुल गाव तेरु नाम है पूर्वी न पार पावे हिंगला हिमाल जावे गोर गर

कर्म की है। सतगुरु अपने सिख नूं परमेश्वर दे नाम दे नाल जोड़दा है। परमेश्वर दा नाम हिरदे दे विच दृढ़ करवांदा है और गुरसिख नूं सच्चे सुख दी प्राप्ति करवा दिंदा है। ए सुख जो नाम दे राही प्राप्त हुंदा है गुरसिख नूं साध संगत दे विच्चों प्राप्त हुंदा है और इस दी प्राप्ति तो बाद जितने भी दुख हन कलेश हन इन्हां सारयां दी निवृत्ति हो जांदी है। सारे ही संशय दूर हो जांदे हन ते सुखां दी प्राप्ति हो जांदी है। साहिबां दा फरमान है।

जयकार करदा है। इस जय जयकार दे पिछे इको ही गल है जो राज दी है, क्योंकि गुरु तो बिना होर कोई ऐसा नहीं जो प्राणी मात्र लई मुकत दा द्वार खोल सके। नौ दरवाजे दसवां द्वार, बुजरे ज्ञानी एहो विचार, एहो ही ब्रह्म दी विचार है, और जेड़ी विचार गुरु तो बिना होर कोई दे नहीं सकदा। साई फरमान करदे हन, गुर कीनो मुक्त द्वारा सब सृष्ट करे जयकारा, क्योंकि दुनिया विच कोई किसे दी एक दिन दो दिन महीना जा साला बदी मदद कर सकदा है, मगर परमात्मा जो है ओ गुरु राही इस संसार दे विच आके सारे संसार नू फिर परमेश्वर दे नाल जोड़दा है। साई फरमान करदे हन, क्योंकि गुरु ही है जेड़ा दोबारा इस मनुख नू परमात्मा दे घर तक पहुंचा सकदा है, और ऐसे दा ही साथ सच्चा है, जो सच्चे गुरु दा साथ करदा है ओ ही सच्चे परमात्मा नू पा सकदा है। साहिबां दा फरमान है।

बाबे दा आना सुन के सारे लोग उधर नू आ गए जिधर गरीब नवाज पातशाह बैठे सन। लगी बरसा

गई भगत भोले। जिस वेले भगतिया ने तकिया भी जिदे विच लोग माया पा रहे ने ओ लोटा किधर चला गया, ते भाई साहब कहंदे ने ओ भगतिया नू ओ भगत पौनी भुल गई, ना उताल रहा ना उराग रहा।

खादी खुण सुजुगी सिरा। जिस वेले बंदे नू अपनी हार हुंदी दिस पवे ना, ए आम बात है, फिर वह झगड़े ते उतर आंदा है, और तां पेश जांदी कोई नहीं। जोगियां ने गुरु नानक बाबा नाल बहस करनी शुरू कर दित्ती। भाई साहब भाई गुरदास जी कह रहे ने, कैसी बात सुनना, जरा प्यार नाल सुनना। कहंदे ने खादी खून सुज

0: वचन जुगीसरा।
1: भाई साहब कहते हूं झगड़ा कर लगे ने, गुरु नानक नु डराउन लगे ने, अपनी शक्तियां दा प्रभाव पाके

कोई उड़न वाला पंछी बन रहा है, कोई बघियाड़ बन रहा है, कोई चीता बन रहा है, कोई शेर बन रहा है। एक पर कर कर के उड़न पंखी, एक पर कर के

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह। दिस इज द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब, सोट महला
1: चौथा
0: चौथा। सब मिलके करो कीर्तन।

ये जो शब्द आप सर्वन कर रहे हो गुरु अर्जन देव पातशाह जी दा शुक्राने दा शब्द है सुलही ते नारायण राख समय दा बादशाह जहांगीर जिसनू ए गल चंगी नहीं सी लगदी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जावे गुरु नानक दे दर ते जिथे गुरु के सिख आके जुड़दे सन हिंदू भी और मुसलमान भी रूहानियत प्राप्त करन लई हजूर दे चरणा विच आ जुड़दे सन केश दे मन विच बड़ा दुख सी के गुरु नानक दे दर दी दिनो दिन वड्याई वधदी जा रही है अपने सीपा सलार नू हुकम दिता भाई तू कश्मीर नू जा रहे हैं जंग करन लई ते रस्ते विच गोंदवाल नाम करके पिंड है जिथे गुरु अर्जन देव रहिंदा है उसनू भी शोध दा जाई उचारण करो श्री वाहिगुरु ते जदों ए पता गुरु अर्जन देव पातशाह जी नू लग्या ता सिखा ने बेनती कीती जो इस शब्द विच अंकत है प्रथमे मता जे पत्री चलावो द्वितीये मता दोए मानक पहुंचावो तृतीये मता किश करो उपाया मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया हजूर अगे बेनती कीती गई के महाराज जे हुक्म करो ता बादशाह जहांगीर नू पत्रका लिख दईए जां दो सियाने बंदे भेज दियो कुछ उपा जरूर करो ता धन गुरु अर्जन देव पातशाह ने आख्या मैं सब किश छोड़ प्रभ तू ही ध्याया नेत नाल जदों बड़े हंकार दे नाल सुली खां चढ़ाई करके आ रहा सी ता इस दा घोड़ा ऐसा पागल होया बलदे पठे विच जा वड़िया ते सुनी समेत स्वाह हो गया इस शुकराने वजो हजूर ने शब्द उचारण कीता सुलही ते नारायण राख सुलही का हाथ कहीं न पहुंचा।

साहिब गुरु अर्जन देव महाराज सच्चे पातशाह ने बख्शिश की, जिथे सारिया भगतां नूं सन्मानिया उथे नामदेव जी का भी आदर किया। नामदेव जी पवित्र बाणी द्वारा मालिक दे चरणा च अरदास करते ने, कहंदे ने हे प्रभु, ए संसार एक समुंदर है, ए समुंदर विच कहंदे ने जदों देवतिया ने समुंदर नूं रिड़किया ते 14 रतन कढे, समुंदर विच बहुत कीमती नायाब तोहफे ने, पर समुंदर विच बड़े बड़े भयानक जानवर भी बैठे हुए ने। सतगुरु कहंदे ने एक समुंदर तां ओह है जिहदे विच पानी दा कोई अथाह नहीं, ते एक समुंदर ए संसार है। नामदेव जी महाराज इस संसार समुंदर दी बात करदे ने, कहंदे ने हे मालिक,

मैं अनजान हाँ, मैनू तैरना नहीं आंदा, तू कृपा करके जरा बांह तां फड़ा, मैं पार लंघ जावां। जिन्हां जिन्हां ने तेरी भगती कीती, जिन्हां जिन्हां ने तेरी आराधना कीती, जिन्हां जिन्हां ने तैनू ध्याया, तू मनुखां तू देवते।

0: दुख जाए पौड़ी।
1: सेव कीती संतोखी जिन सचो सच त्याया, उन्हें मंदे पैर रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया।

तेरे दरजत का जोर अगर तो आओ द्वापर तपे का सत अगर तुआओ कलयुग रथ अग्न का कूड़ अगर तुआओ शाम कैसे तुम

आखी वे तका आपे वते वट धागे अवरा कत्ते लै पाड़ करे भी आहो कड़का गल दसे राओ सुन वेख।

और फिर अमृत नाम वाहिगुरु दा एक थाल है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जिस दे विच ए बाणी असां कलयुगी जीवां दा उद्धार।